0: ओके जी, क्योंकि मैं कॉलेज में होती हूँ और आज मेरी छुट्टी है, इसलिए मैं शो सुन रही हूँ। रवीश, अच्छा अल्लाह करे कि आपकी कॉलेज की बहुत सारी छुट्टियां हो जाए और आप शो सुने। ओके जी, आई एम मोहम्मद खान फ्रॉम मोना, हाउ आर यू असम भाई? ब्रांड लॉन्ग लीव इज नॉट कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोडक्ट, आओ चाय बाकुम से की लेट्स सी लीव। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, जोड़ बराबर ही, तस्वीर तस्वीर बराबर ही।
1: मासर
0: सूख बरी क्यों दी चरदना ओके जी किफायतुल्लाह मलंग सिर्फ तस्वीर प्रोग्राम के हर के लिए स्टूडियो में शिपखेरा ले भाई माँ
1: मनना।

ओके जी, नो एपिटाबाद वाला और मासेरा वाला, अटक वाला, सवाबी वाला, शांगला वाला, तासु बिल्कुल लगराविक शेखा अल्लाह का दुमरा पूरी खूबून मजना की चिता सुदुमरा खूबून कई दुमरा हामोश है ना बिल्कुल तासु दे सड़ना आज जमुंग सर प्रोग्राम की बिल्कुल रिस्पांस अबू है माचे दुमरा खैस्तन दे और बाकी खबर चूंकि खैर नन जमुंग प्रोग्राम लक्षण डिस्टर्ब शो आदागी तवज्जो हम जमुंग औरीदुन की बवाली चिन्ह में चूंकि प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी न्यूज़ का बे रेडियो बन खड़े भी बहरहाल उस चीज सुख जमुंग दिसना का उस बड़ी पाकिस्तान प्रोग्राम हो रही दी आखिरी टाइम के मुंग सरख पल आवाज अल्पाज यहाँ समुंग ने से किस्मत पूछ भी भुगतने भी नुमंग बिल्कुल कवल इसी आप 0335 435 435 35 15 वाने तासुरात ले शी जमुंग ने तपूस कवल इसी जमुंग ने भुगतने कवल इसी संगे तास्तमा जमुंग दीजना का उसमेडिक पाकिस्तान आधा दो किस्मों पे स्वाच खबर उकला आनु बिल्कुल कदी ने लावा तासु स्किन चिकम दे ऑयली भी जात ऑयली भी आप आगे बने गर्द गुबार चमकी की तासु लक्षण सफर उकी बबाइक बने उकी कॉलेज तलार शी यूनिवर्सिटी तलार शी आओ वापस राशि नुस्ता सुमक बने अगर गर्द दे डेर ज्यादा प्राती हुई यो चिकम द मख दा वाला वाला होल्स थी अगर बिल्कुल द दूड़ डक्शी हुई द गर्द गुबार डक्शी हुई

0: It's 10 o'clock.
1: It's 10 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
4: خلکو تا دومره فائدہ ملاویگی آگا کبنی دا اشما کبنی دا چی اچھا اشما

0: It's 1:30 p.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है, ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है, ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: रेडियो अमन 88.4 टांग, रेडियो अमन जीत की लगन।
1: चाहतों के रंग अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रोजाना 4 से 5 बराहे रास्त स्टे विद अस।
1: ये दौर केसन है, ये जमाना केसन का है, ये गूंज ये आवाज जो हर सू है, हर लब पे है, हर जुबान पे है, हर घर में है। ये फकत आवाज नहीं है, ये एतमाद है, ये रिश्ता है, रिश्ता जो आपसे बन चुका है, रिश्ता जो एतमाद का है, यकीन का है, भरोसे का है। किसन नेचर्स पर एतमाद का शुक्रिया।

Bismillahir Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 Dera Ismail Khan, Radio Pegham 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Taka. Jinaab, teen bade radio station aur ek awaz aur ye awaz hai Kesan Natural Pakistan ki awaz. جناب وہ آواز جو کہ آواز ہے خوبصورتی کی, وہ آواز جو آواز ہے شفا کی, وہ آواز جو آواز ہے آپ کے صحت کی. اب سپہر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتے ہی جناب تینوں ریڈیو اسٹیشن سے ایک ساتھ آپ کو یہ آواز سننے کو ملتی ہے جو کہ ہے کیسن نیچرل پاکستان کے بہترین ٹائم پروگرام کیسن ٹی ٹائم کے. تو جناب ہمیں سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز, انکل اینڈ آنٹیز, چاچا اینڈ چاچیز, مام اینڈ مامیز, دادا اینڈ دادیز, نانا اینڈ نانیز, آپ کو سبھی سننے والوں کو خلیل تابع شمان کا سلام, ڈھیر ساری محبتیں آپ سب کے نام. اور اسی امید کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے تمام چاہنے والے, تمام لسنر, تمام یوزر, تمام فینس بالکل یہ خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے اور آج کا آپ کا دن بہت ہی بہت ہی بہت ہی اچھا گزر رہا ہوگا. جناب ہر وہ دن آپ کا اچھا بن سکتا ہے, ہر وہ دن آپ کا اچھا ہوتا ہے کہ جس دن آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ یعنی کہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں اور کسی بھی نیگیٹو بات کو, کیونکہ جناب نیگیٹو جو باتیں ہوتی ہیں, غلط گمان جو ہوتے ہیں, وہ شیطان کی طرف سے آپ کے ذہن کے اندر ڈالے جاتے ہیں. مختلف قسم کی تخریب کاری کرنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی چغلی کرنا, ٹھیک ہے جناب, کسی کے پیچھے پیٹ پیچھے باتیں کرنا, کسی کے خلاف چالیں چلنا, ٹھیک ہے, کسی کے خلاف تدبیریں کرنا, کسی کے لیے گڑھے کھودنا, یہ تمام نیگیٹو سوچیں ہوتی ہیں. اور نیگیٹو سوچ جو ہوتی ہے آپ کو مختلف قسم کی تحقیق سے ثابت ہے کہ جناب جب اس طرح کی تخریبی آپ حرکات کرتے ہیں اور نیگیٹو سوچتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, تو بیسیکلی آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جناب ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہوئے جناب, اور ہر دن آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ ہر دن میں آپ کا ایک ہی ایم ہونا چاہیے, ایک ہی مقصد کہ آج کے دن میں آپ سے, آپ کی ذات سے کس کو کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے. یا ہر دن آپ کا کاؤنٹ کرتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ آج کے دن تو گزر گیا, کیا اپنے لیے تو میں نے بہت سارے پیسے کما لیے, ٹھیک ہے جناب, مزدوری بھی کر لی, ڈھیر سارے پیسے کما لیے, گھر والوں کے لیے کما کے لے کے آ گیا, لیکن کیا میں نے خدا کی مخلوق کے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ کیونکہ اس دن بھی ہم ذکر کر رہے تھے ایک آیت کا کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کا خیال کرے, جو دوسروں کا احساس کرتا ہے. تو کیا آج کے دن میں آپ نے صرف اپنے لیے کمایا, اپنے لیے دعائیں کی, اپنے لیے سب کچھ مانگا, یا آج کے دن کی جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کے پاس کیا اس میں کچھ ایسا بھی ہے جو کہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے, آپ نے کسی اور کے لیے فائدے کے لیے ہے؟ تو بس یہی جائے گا جو آپ آج آپ نے کر دیا ہے اپنے فائدے کے لیے نہیں, دوسروں کے لیے کوئی آسانی پیدا کر. آپ چائے کے ایک کپ کے ساتھ میری مزے مزے کی باتیں سنیں گے, میری مزے مزے کی کمپنی کی مزے مزے کی پروڈکٹ ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چائے کے ایک کپ کے ساتھ, کیونکہ جناب یہ ہے کیسن کا ٹی ٹائم. تمام سننے والوں کو جناب ڈھیر سارا پیار اور ڈھیر سارا ویلکم ایک دفعہ پھر سے. جناب اس وقت اگر آپ اس وقت جی جناب اگر آپ وانا سے جناب ڈیر اسمل خان کی طرف آ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے ریڈیو کو ٹیون کیا ہوگا, تو اس وقت میری آواز آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہے. تو جناب یہ آواز ہے کیسن کی اور یہ کیسن کے پروڈکٹ. آپ وانا سے آ رہے ہیں تو وانا سے لے کر جناب دور دراز کے علاقوں تک اب یہ پروڈکٹ پہنچ چکے ہیں. اور اگر آپ اس وقت جی پنجاب سے انٹر ہو رہے ہیں, چاہے پنجاب والی پل سے انٹر ہو رہے ہیں یا پھر آپ جو ہے ڈھکی سائڈ سے جو ہے چشمہ بیراج سے انٹر ہو رہے ہیں, تو میری آواز آپ کے کانوں میں ہوگی, کیونکہ جناب اس وقت اس علاقے کا ریڈیو پیغام آپ سن رہے ہوں گے اور وہاں پر میری آواز اس وقت لائیو اس شو کے تھرو یعنی کہ ہر طرف سے جہاں جس بھی علاقے سے آپ ڈیر اسمل خان کی طرف آ رہے ہیں وہاں پر آنے والے ہر راستے کے اوپر آپ کو ہر فریکوینسی کے اوپر خوبصورتی کی, صحت کی اور شفا کی یہ آواز سنائی دے رہی ہوگی جو کہ ہے کیسن کی آواز.
आप? कैसे नजर पाकिस्तान, और हम शुक्र गुजार हैं रब ताला के कि जिसने हमें इतने कम वर्षे में इतनी इज्जतों से नवाजा है। उसके बाद आप लोगों का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। और न्यूली एरिया हमने ओपन किया है, टांग का एरिया, और दिल खुश हो जाता है। रोजाना 2 किलो खून मेरा बढ़ जाता है जब टांग का डिस्ट्रीब्यूटर मुझे तस्वीरें भेजता है आप लोगों की, कि जनाब कोई ऑयल लेके जा रहा है, कोई शैम्पू लेके जा रहा है, कोई क्रीम लेके जा रहा है, कोई फक्की लेके जा रहा है, कोई शिफा दर्द लेके जा रहा है। यानी कि तकरीबन मुझे जो पिक्चर्स आ चुकी हैं उनके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स होती हैं, कोई फेस वॉश लेके जा रहा है, कोई जफरानी सोप। तो हर रोज मेरा जो है 1 किलो खून बढ़ रहा है भाई टांक वालों, है जी। क्योंकि जनाब जब आप नए एरिया में जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा वेट कर रहे होते हैं कि उस इलाके के लोग आपको कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, और स्पेशली जब आपको पश्तो न पोहे गम, है जी, पश्तो ही ना आती हो और फिर भी आपने वहां से रिस्पांस लेना हो, तो बहुत खुशी होती है कि जो लोग मेरी उर्दू की बातों को समझ रहे हैं, और ना सिर्फ समझ रहे हैं कि जनाब जेब से पैसे निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है, समझना तो आपको 2 दिन के अंदर समझ आ जाती है चीजों की, लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि मेरी बातें सुनकर जेब से जनाब 1,000 का नोट निकालना बड़ी बात है। क्योंकि हमने टांक शरीफ के अंदर जो है एक बिस्मिल्लाह पैकेज दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपको अक्सर बता रहा होता हूँ कि भाई बिस्मिल्लाह पैकेज जो है, जो 1,000 रुपए में आप अपनी मर्जी की कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसके बाद 2 चीजें फ्री मिलेंगी आपको, एक जफरानी साबुन और एक जो है परफ्यूम फ्री मिलेगा। ये टांक वालों के लिए ऑफर है। तो मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि ऑयल, शैम्पू और क्रीम, ठीक है जनाब, ऑयल केसन का, केसन की शैम्पू और केसन का क्रीम खरीदेंगे तो ये 1,000 पूरे हो जाते हैं, और ऊपर से साबुन और परफ्यूम आपको फ्री मिल जाता है। लेकिन आज एक और पिक्चर मेरे सामने आई आपके डिस्ट्रीब्यूटर मंसूर जनरसोर हाजी जरबत खान की तरफ से, और मैं भी चौंक गया कि भाई ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों नहीं बताया आप लोगों को, है जनाब, ये वाला कॉम्बिनेशन भी तो 1,000 रुपए का बनता है। एनी हाउ आइडिया आ गया, तो मैं भी बता रहा हूँ कि जनाब एक बंदा, एक भाई थे जो हमारा बिस्मिल्लाह पैकेज लेके जा रहे थे, तो उसके अंदर 3 चीजें एक साइड पर पड़ी हुई थी, बाकी 2 फ्री पड़ी हुई थी। तो 3 चीजें क्या थी मैं बताता हूँ कि ऑयल, शैम्पू और क्रीम खरीदें तो ये 1,000 का पैकेज बन जाएगा, साथ में साबुन और परफ्यूम फ्री मिलेगा। लेकिन उन्होंने लिया हुआ था जनाब ऑयल, शैम्पू और साथ में जनाब वेट कम पेट कम फकी। ये चूंकि महंगी है, 400 रुपए की है, लेकिन वो 10% काट करना, ये भी 1,000 रुपए में आ जाती है। लेकिन अब जब 10% वो इसके ऊपर मजीद भी आपको काट के देते हैं ना, तो वो 1,000 रुपए में आ जाती है। तो भाई ये वाली कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई बंदा मोटापे का शिकार है, बहुत ज्यादा मोटा है, या फिर मोटा हो रहा है जनाब अपनी हरकतों की वजह से, क्योंकि जनाब हरकतें ही इंसान को मोटा करती हैं। और वो कौन सी हरकतें होती हैं हम आपको कभी तफसीलन बताएंगे। भाई ये ऐसा बंदा मोटा नहीं होता, ये इंसान की अपनी हरकतें होती हैं जिसकी वजह से जनाब इतना मोटा ताजा हो जाता है। उसमें जनाब जो है सबसे बढ़कर जो है ये बाहर के खाने जो होते हैं, जो आप जिंगर बर्गर मंगवाते हैं, या शामी अंडे शामी वाला जो है आप बर्गर मंगवाते हैं, लेकिन जनाब पिज्जा खाते हैं, समोसे खाते हैं, ये वो सारी चीजें हैं जनाब जो जब आप खाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको मोटा करती है। सबसे ज्यादा मोटा करने वाले जो जंक फूड है ना, वो पिज्जा और बर्गर है। बर्गर और पिज्जा, अगर आपने एक बर्गर समाप्त फरमाया, यानी कि अगर आपने एक बर्गर खाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने जो है आज की रात का खाना नहीं खाया। रात का खाना आप कितना खाते होंगे, या दिन का खाना कितना खाते होंगे, 2 रोटियां खा लेते होंगे, बहुत ज्यादा खा लें तो 2.5 रोटी खा लेंगे, 3 रोटी खा लेंगे। लेकिन कहते हैं कि जब आपने एक बर्गर खाते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 6 से 7 रोटियां खाई हैं। ठीक है जनाब, जब आप एक बर्गर शरीफ खाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने 6 से 7 रोटियां खाई हैं। अब आप सोच रहे होंगे खलील भाई आपको कैसे पता चला कि 6 से 7 रोटियां, तो भाई ये निजाम कैलोरीज का होता है। ठीक है जनाब, कि कौन सी चीज के अंदर कितने कैलोरीज होती हैं, आपकी बॉडी को कितने कैलोरीज की जरूरत होती है खाने के लिए। तो इसी तरीके से जो है एक रोटी जो है उसके अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं, ठीक है जनाब, या 3 रोटियों के अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं, या 7 रोटियों के अंदर जितनी कैलोरीज होती हैं ना, एक बर्गर के अंदर उतनी कैलोरीज होती हैं। ठीक है जनाब, इसी तरीके से जब आप पिज्जा खाते हैं तो पिज्जे का एक स्लाइस जो होता है, ठीक है जनाब, वो तकरीबन 3 से ज्यादा बल्कि 4 रोटियों के बराबर हो जाता है। यानी कि आपने एक पिज्जा नहीं खाया, आपने 4 से 5 रोटियां खाई हैं। वो आपको तो आप तो 2-2 स्लाइस भी खा जाते हैं ना उसके।
ठीक है जनाब। लेकिन कैलोरीज की बात होती है कि कैलोरीज जो होती है ना वो किस चीज के अंदर कितनी ज्यादा होती हैं, तो ये पिज्जा हो गया या जना बर्गर हो गया या कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, इनके अंदर कैलोरीज आप कभी देखें, ये बोतल आप जब पीते हैं कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो पीछे लिखा होता है हाउ मच कैलोरीज, ठीक है जनाब, उसमें लिखा होता है पर सर्विंग कैलोरीज कितनी है, यानी कि टोटल बोतल के अंदर कितनी कैलोरीज को डाला गया है, और जब वन सर्विंग आप एक बंदा पिएगा एक गिलास तो वो कितने इनटेक करेगा कैलोरीज, तो ये कैलोरीज का सीन होता है जनाब। और इसी तरीके से चावल की एक प्लेट जब आप खाते हैं, चावल की एक प्लेट यानी कि आपने दो रोटियां खा ली नॉर्मल है, लेकिन अगर आपने एक प्लेट चावल की खा ली तो इसका मतलब है आपने चार पांच रोटियां खा ली, ठीक है, चावल के अंदर भी कैलोरीज जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो भाई ये होता है सीन खाने का, और इसके हवाले से मैं आपके साथ चार्ट शेयर करूंगा, और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब जो वेट कम पेट कम है उसके बॉक्स के अंदर ही ये चार्ट हम आपको डाल कर दें, ठीक है जनाब, और इस चार्ट की मदद से आप अपनी डाइट को कंट्रोल कर सके, ठीक है जनाब। डाइट को हम नहीं कंट्रोल करते, ठीक है जनाब, और वेट कम पेट कम खा रहे होते हैं तो फिर कहते हैं कि उस तरीके से तो फर्क तो नहीं पड़ रहा, आप अपनी डाइट को थोड़ा सा कम कीजिए, एटलीस्ट इन चीजों को जरूर कम कीजिए जो आपका वजन बढ़ा रही है, जो एक्स्ट्रा चर्बी का सबब बन रही है, ठीक है जनाब, थोड़ा बहुत अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्द आप लोगों को वेट कम पेट कम के बॉक्स के अंदर जो है इसका चार्ट हम बताएंगे, ठीक है जनाब, उसी चार्ट के मुताबिक आप अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे कि एक दिन में आपने अगर चावल खाने हैं तो कितने खाने हैं, मोटे अगर हो गए हैं, ठीक है जनाब, चिकन पीस खाना है तो कभी कभी, अच्छा ये इस तरह नहीं होता कि अगर आपने बर्गर जो है बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं, यानी कि अगर आप महीने में एक दफा पिज्जा खा लेते हैं इट्स ओके, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जनाब, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनकी आदत होती है हर दूसरे दिन जनाब जो है वो कॉल करके जो है पिज्जा मंगवाना या फिर बर्गर हर दूसरे दिन या रोजाना, ये उन लोगों को मोटापा होता है, जो महीने में एक दो दफा जो है हंटिंग कर लेते हैं इट्स ओके, उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो रूटीन बना लेते हैं जनाब इन चीजों को, जो कि रूटीन की चीजें नहीं है, ये मजे की चीजें हैं, और इनसे मजे लिया करें जनाब, इसको रूटीन का हिस्सा अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाए।

जी जनाब, पर्दे वाला फेस वॉश है जनाब, क्योंकि ये खवातीन के लिए है। लेकिन मजे की बात है, जब हमने इस फेस वॉश को लॉन्च किया था ना, जो स्पेशल फॉर वुमेन फार्मूला है, तो लड़कियों से ज्यादा लड़के लेने के लिए आ गए थे। उन्हें पता चला ये कोई खास चीज उन्होंने खवातीन के लिए बनाई हुई है, तो हम ना रह जाए। ठीक है जनाब, तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लड़के हमसे लेके गए किशन शॉप के ऊपर। हम कहते थे भाई क्या करते, कहते नहीं वो घर वालों को लेके जा रहे हैं, लेकिन वो ले अपने लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि उनको पता था कोई खास चीज तो इन्होंने डाली है इसके लिए, जो सिर्फ नाजिक के लिए बनाया। तो हमारा जो प्योर व्हाइटनिंग फेस वॉश है, किशन का प्योर व्हाइटनिंग फेस वॉश, लवली फेस वॉश जिसको हम कहते हैं जनाब, ये जो है ये बहुत ही स्पेशल फार्मूला फेयरनेस और व्हाइटनिंग का है। अच्छा, एक चीज होती है व्हाइटनिंग और एक होती है फेयरनेस, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है जनाब, ये एक चीज नहीं है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। व्हाइटनिंग और फेयरनेस जो होती है ना, दो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तो व्हाइटनिंग का क्या, व्हाइटनिंग का मतलब होता है जनाब ब्राइटनेस आपकी स्किन के ऊपर, लेकिन जो फेयरनेस होती है वो कुछ और चीज है। वो ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो दाग धब्बे है ना, और वो हटाने वाली चीज जो होती है ना, उसको बोलते हैं ये फेयरनेस है, फेयरनेस। ठीक है जनाब, आपकी स्किन के ऊपर क्लैरिटी लाती है, फेयरनेस लेके आती है। सो ये फेयरनेस फेस वॉश प्लस व्हाइटनिंग फेस वॉश है, प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश जो केसन का है, ये फेयरनेस फेस वॉश है। अल्लाह को जान देनी है, इस वक्त वो पुराने लिसनर हमारे पास अगर सुन रहे हैं तो काइंडली कॉल या फीडबैक करेंगे, ठीक है जनाब। लेकिन नहीं तो मैं उनके भी आपके ऊपर आपको बताता चलूं कि बहुत सारी फीमेल ने जब हमारा ये फेयरनेस प्लस वाइटनिंग फेस वॉश इस्तेमाल किया, लवली फेस वॉश, तो उन्होंने कहा भाई हमने जब इसको एक डेढ़ माह यूज किया तो हमें तो क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दो, यकीन कीजिए, लिटरली मैंने एक दो फीमेल से पता किया कि आप क्रीम पहले लेके जाती थी केसन की नाइट क्रीम, आजकल आप दूसरा महीना नहीं लेके जा रहे। तो उन्होंने कहा आपने अपने पाओं के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है। मैंने कहा क्या, कहते आपके लवली फेस वॉश ने इतनी फेयरनेस और इतनी वाइटनिंग दे दी है कि अब जरूरत नहीं पड़ती कि कौन रात का जो है अजाब संभाले और रात को क्रीम भी लगाए, यानी कि इतना प्यारा ये फेस वॉश है। तो भाई डेरा के लोग जानते हैं लवली फेस वॉश को, केसन का लवली, ठीक है ना। लवली फेस वॉश और कंपनी को भी होंगे मेरे ख्याल में एक दो के हैं, लेकिन केसन का जो है उसका नाम है प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश। पिंक कलर का ये फेस वॉश है, इसकी फ्रेग्रेंस, इसकी खुशबू, इसका मटेरियल, जैसे आप खोलेंगे तो ये क्रीम की तरह निकलेगी, मक्खन मलाई है जनाब। ये कोई जेल वाला फेस वॉश नहीं है, ठीक है जनाब, ये कोई शैम्पू से बना हुआ फेस वॉश नहीं है, ये क्रीमी फेस वॉश है, ठीक है जनाब, क्रीमी प्लस मिल्की फेस वॉश। जब ये फेस वॉश से निकलता है तो बताता है कि भाई कोई चीज है, ठीक है जनाब। और थोड़ी सी मिकदार ले लेंगे तो इतनी प्रीमियम क्वालिटी का हमारा फेस वॉश है, स्पेशली खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए भाई। और मैं यकीन कीजिए, मैं आपको बताऊं कि स्किन केयर रूटीन में जो लोग अच्छे फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं ना रेगुलर, उनको कभी भी इंटेंस किस्म की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही उनको क्रीमों की तरफ जाना पड़ता है, ना ही उनको सीरम की तरफ जाना पड़ता है। ये कौन लोग होते हैं जो इतने बड़े बड़े मसले लेकर डॉक्टरों के पास पहुंच जाते हैं? ये वो खवातीन होती हैं जो अपनी डेली स्किन केयर रूटीन, जो उनकी डेली की रूटीन है, उसको फॉलो नहीं करती हैं, ना ही क्लिनजिंग दो दफा करती हैं, ना ही उनकी लाइफ में फेस वॉश। किसी भी ऐसी फीमेल से आप पता कर लें जिनको बहुत ज्यादा छाइयां हो, जिनको बहुत ज्यादा दाग धब्बे हो, तो उससे पूछ लें बहन ये बताओ तुम्हारे पास कोई फेस वॉश है? आप उसे पूछे बिठा के, तो वो बोलेगे नहीं भाई मैंने फेस वॉश तो कभी नहीं लगाया है जी ना, तो फिर छाइयां भी आएंगे, फिर चेहरा भी खराब होगा। अगर अब वो कहते हैं ना कि महंगा रो एक बार और सस्ता रोए बार बार, जो बचत करता है फिर आखिर में डॉक्टर के पास जाकर ना और 10,000 रुपए इकट्ठे देने पड़ते हैं, और जो रूटीन में 200-300 रुपए का अच्छा फेस वॉश यूज करते रहते हैं तो ना ही उनके चेहरे के ऊपर छाइयां आती हैं, ना ही दाग धब्बे आते हैं, फेयरनेस, चेहरा फेयर रहता है, और जो व्हाइटनिंग होती है वो भी विजिबल होती है। तो ये जो फेस वॉश है हमारा जो हमने बनाया, इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके पर लिखा हुआ है द स्पेशल फेयरनेस एंड व्हाइटनिंग फार्मूला फॉर वुमेन। ठीक है जनाब, ये बात आपको इंडिया में मिलेगी या पाकिस्तान में केसन कंपनी में मिलेगी। और आज तक आपने मार्केट में लड़कियों के लिए स्पेशल फार्मूला फेस वॉश नहीं देखा होगा। अब बात आती है कि क्या है इसके अंदर, दावा कर रहे हैं ना हम, दावा कर रहे हैं कि भाई ये सिन्फ नाजिक के लिए है, ये खवातीन के लिए है, ये लेडीज के लिए स्पेशल फेस वॉश है, तो इसके अंदर ऐसा क्या है? तो भाई इसके अंदर जो है वो जो चीज ऐड की गई है जनाब, नंबर वन इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड, नंबर टू इसके अंदर नियासिनामाइड, और नंबर थ्री जो इसको इम्तियाजी हैसियत देता है जनाब, वो है जनाब जो अनार होता है, पोमीग्रेनेट जिसे कहा जाता है जनाब, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। और खवातीन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जनाब इससे जबरदस्त फार्मूला
और कोई नहीं हो सकता जो ये एक्सट्रैक्ट अपना कमाल दिखाता है। और जब फीमेल इस फेस वॉश को यूज करती है तो उनको समझ आ जाती है कि इससे पहले मैंने जो फेस वॉश लगाया था उसका क्या इम्पैक्ट था और अब जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो किस तरीके से मुस्बत तरीके से मेरी स्किन को बेहतरी की तरफ लेके

जी जनाब, पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो है वो डलनेस आपकी स्किन के ऊपर जो बीमार बीमार सा चेहरा लगता है, रौनक नहीं होती, लेकिन अब उस रौनक को बहाल करेगा। आपकी स्किन की क्लैरिटी में इसका बहुत बड़ा रोल है। सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर जो मौजूद है वो स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन उसकी होती है, नियासिनमाइड जो होता है वो भी वाइटनिंग का इफेक्ट रखता है, और साथ में पोमीग्रेनेट। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म का ये फेस वॉश है, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि भाई अगर आप में से किसी ने भी हमारे इस फेस वॉश को एक दफा ट्राई कर लिया, एक दफा जिस भी बहन ने जिसने भी भाई ने इस फेस वॉश को खरीद लिया, वो कभी भी जिंदगी भर इसको चेंज नहीं कर पाएगा। चेंज करेगा, कोई और लेगा, फिर भी इसकी तरफ लौट के आएगा, क्योंकि जनाब इसकी बहुत कम क्वांटिटी जो है वो झाग बनाती है, ठीक है जनाब। इसका विजिबल इफेक्ट जो है स्किन के ऊपर आता है, और ये ना सिर्फ आपके ग्लो को बढ़ाता है बल्कि ये साथ साथ में आपके ऑयल कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। फाउंडेशन का प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है, ये आपके स्किन का ऑयल कंट्रोल करने में भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट है। और गर्मियों में तो मेरे ख्याल में कि जनाब फेस वॉश से आपको हटना भी नहीं चाहिए। अगर आप स्किन के ऊपर ताजगी चाहते हैं, रिफ्रेशिंग फेस चाहते हैं, ग्लोइंग फेस चाहते हैं, और जनाब ये चाहते हैं कि ऑयल निकल कर आपके चेहरे को ब्लैक ना कर सके, तो भी बिल्कुल केसन के फेस वॉशेस का इंतखाब कीजिए। और स्पेशली आज जो हमने बात की है वो डिजर्विंग पीपल के लिए, कि जनाब जो लोग जी खवातीन को स्पेशल फार्मूले को डिजर्व करती हैं, और उनके लिए स्पेशल फार्मूला होना चाहिए जो उनकी स्किन के मुताबिक, क्योंकि मर्द और औरत की जो स्किन होती है वो किसी तरीके से भी एक तरह की नहीं होती है, ठीक है जनाब। तो फार्मूलेशन इसलिए सेपरेट बनाई जाती है कि ये उनको ज्यादा फायदा पहुंचा सकेगी। तो क्या प्राइस है इसकी? 100 ग्राम का ये हमारा फेस वॉश है, पिंक कलर का ये फेस वॉश होगा। इसके अंदर फेस वॉश जो है व्हाइट कलर का होता है, ठीक है जनाब। यकसम तौर पर मर्द और औरतें दोनों यूज कर सकती हैं, लेकिन स्पेशली ये फार्मूला जो है वो खवातीन के लिए है, क्योंकि पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट जो होता है यानी जो अनार का अर्क है, वो खवातीन की स्किन को टेक्सचर को बहुत ज्यादा सूट करता है, और बहुत जल्दी ही गुलाबी पन आपकी स्किन के ऊपर आ जाएगा जब आप, यानी कि बिल्कुल बेबी पिंक, जिस तरह बच्चों की गाले पिंक कलर की होती है, वैसे ही आपको ये केसन का लवली फेस वॉश जो कि प्योर व्हाइटिंग लवली फेस वॉश है, ऐसी ही स्किन देने की सलाहियत रखता है।

जी जनाब, मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान, और आप अपने इलाके के एफएम में, यानी कि अगर आप टांग में मौजूद हैं तो 88.4 अमन रेडियो से मेरी आवाज़ सुन रही हैं। डेरस मिलखान में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91 से मुझे सुन रहे होंगे, और अगर पहाड़पुर या गिरदोनमा के इलाके में मौजूद हैं तो आप मुझे रेडियो पैगाम 97.4 पैगाम रेडियो से सुन रहे होंगे। जनाब, पैगाम तीनों शहरों में हमारा जा रहा है, और पैगाम खूबसूरती का है, पैगाम शिफा का है, पैगाम सेहत का है।

0: जनाब, पहला मैसेज हमें जो रिसीव हुआ पड़ा है वो ग्लोबल एफएम 91 डेयर इस्माइल खान से। अच्छा जी, जो मैसेज करते हैं ना तो स्टार्ट में भाई अपने एफएम का नाम लिखा करें ताकि मुझे गौर ना करना पड़े एंड के ऊपर कि कौन सा नाम है और कहाँ से है। तो कोशिश कीजिए अपना नाम लिखा कीजिए। तो दानिया हमारे साथ जो है मौजूद है, कहते हैं भाई आपने कल कहा था कि हाजमे के लिए तो ये हाजमा कंट्रोल सिरप ले जाती हैं और वालदा के लिए मोटापे के लिए वेट कम, तो पेट कम, तो मैंने कहा था स्किन के लिए भी कुछ लें, तो ये कह रहे हैं कि भाई स्किन का भी सोच रही हूँ कि कुछ ले लूँ केसन का, और हो सकता है कि कल आ जाऊँ आपकी शॉप के ऊपर। जी आए, और स्किन के लिए तो भाई बहुत ही प्यारी दो क्रीमें हमारे पास मौजूद हैं। एक केसन की ग्लूटा वाइट क्रीम है जो कि फेयरनेस को बढ़ाती है, ब्राइटनेस को बढ़ाती है, स्किन को क्लियर करती है, छाइयों दाग धब्बों को खत्म करती है, और दूसरी हमारी जाफरानी क्रीम जो कि सिर्फ नाइट क्रीम है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। उसी के साथ भाई लड़कियों वाला फेस वॉश, अब मर्दों वाले फेस वॉश से थोड़ा सा पर्दा कीजिए, और घर के अंदर जो है केसन का खवातीन वाला फेस वॉश, प्योर वाइटनिंग लवली फेस वॉश लाइए। 400 रुपए इसकी कीमत है, 400 रुपीज इसकी प्राइस है, और आप इसे किसी भी उस फेस वॉश के साथ कंपेयर कीजिए जो क्रीमी फेस वॉश है, ठीक है सर। आप जेल टाइप फेस वॉश की बात नहीं कर रहा, जो क्रीमी फेस वॉश होता है यानी कि फोमिंग फेस वॉश, क्रीमी मिल्की फेस वॉश के जब वहां से आप निकालें तो वो क्रीम की तरह फेस वॉश निकले, ये एक जो है प्रीमियम किस्म का फार्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए और इम्पैक्टफुल होते हैं ये फेस वॉश। तो हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है इन्हीं फेस वॉशेस की मैन्युफैक्चरिंग को चुना था कि हमारे फेस वॉश जो है वो क्रीमी फेस वॉश। तो कल आप आएंगे इंशाल्लाह तो फिर आपको सजेस्ट करेंगे कि आपने क्या खरीदना है, लवली फेस वॉश या फिर ग्लूटा फेस वॉश, इन दोनों में से आपकी चॉइस होनी चाहिए। और गो पिंपल भी है जो कि एक्नी वालों के लिए है, और चारकोल फेस वॉश भी है ऑयली स्किन वालों के लिए। आमिर रवान पाकिस्तानी हमें सुन रहे हैं जनाब ग्लोबल एफ एम 91 से, और सलाम खलील भाई कैसे हैं, लाजवाब है ग्लूटा वाइट क्रीम, ग्लूटा वाइट सोप के कितनी प्राइस है। लास्ट में चाचा अमानुल्ला राही को सलाम कह रहे हैं। अच्छा जी, ग्लूटा क्रीम इन्होंने ले ली है और कहते हैं कि बहुत अच्छी है, लेकिन कह रहे हैं कि साबुन कितने का है। 250 रुपए का साबुन है। फतेह मोड़ के ऊपर हमारे बहुत सारे यूजर हमें सुनते हैं जी, उनका बेहद शुक्रिया, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ के ग्लोबल एफएम 91। अब दूसरी तरफ दूसरी दफा जब ये स्टार्ट हुआ है तो मैं देख रहा हूँ कि किस इलाके से ज्यादा हमें रिस्पांस आ रहा है, ठीक है ना, कौन से इलाके के लोग जो है वो जागे हुए हैं। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो रिस्पांस और जो ऑर्डर हमें ग्लोबल एफएम 91 के प्रोग्राम स्टार्ट होने से आ रहे हैं वो फतेह मोड़ के आसपास जितने लोग हैं जी, बहुत शुक्रिया। और वहां पर दुबई जनरल स्टोर है, रहमान शॉपिंग सेंटर है, और साथ में फहद जनरल स्टोर है, डेयर इस्माइल खान की मैं बात कर रहा हूँ, फतेह मोड़ के पास। तो वहां से माशाल्लाह जो फहद जनरल स्टोर है वो भाई आप यकीन कीजिए कि 4 दिन पहले आए थे, बहुत सारा सामान लेके गए, ठीक है जनाब, और आज फिर सुबह सुबह आए, आज भी बहुत सारा, यानी कि पहले भी 2 कार्टन लेके गए, आज भी 1 कार्टन लेके गए माशाल्लाह, और नई नई चीजें लेके जा रहे हैं जो पहले थोड़ी थोड़ी लेके गए थे, अब वो ज्यादा ज्यादा, यानी कि 2-2 दर्जन जाफरानी क्रीम, 2-2 दर्जन जाफरानी साबन, हैंड एंड फुट वाइटनिंग क्रीम 2-2 दर्जन, यानी कि इस तरह की कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से हमारे कस्टमर मौजूद हैं और जो नए लोग हमारे साथ अटैच हुए हैं तो वो भी बढ़ चढ़ के खरीद रहे हैं। तो भाई बहुत शुक्रिया, हेड्स अप यू पीपल जो फतेह मोड़ के आसपास है या फतेह शहर के साथ या कुरैशी मोड़ के आगे जितने लोग मौजूद हैं और ग्लोबल एफएम 91 को वो सुन रहे हैं और ग्लोबल एफएम 91 को सुनते ही ये रिस्पांस कर रहे हैं। तो जनाब बेहद शुक्रिया आप सभी लोगों का।
1: मैं सोच ना पाऊं दिल ये फकीर तेरे दर पे गिरा।
0: मोहम्मद अजहर पहाड़पुर से जनाब, और कहते हैं कि ग्लूटा वाइट क्रीम की प्राइस क्या है। अच्छा जी, केसन की जो ग्लूटा वाइट क्रीम है उसकी कीमत है 350 रुपए और विजिबल वाइटनिंग देगी जनाब आपको। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को सलाम, मोहम्मद अजहर फ्रॉम पहाड़पुर, ठीक है जनाब। ओके जी, एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद हमजा खेमटा फ्रॉम मूसावाली पिपला से। जी जनाब, आज ग्लोबल एफएम 91 का मुकाबला लगा हुआ है पहाड़पुर के साथ, के एक मैसेज ग्लोबल एफएम 91 का, एक पहाड़पुर का, लेकिन टांग का अभी तक हमें कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ, देखते हैं कि वो कॉल करते हैं या उनके मैसेज भी आए हुए हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं, अगले महीने से बहुत जबरदस्त किस्म के हम आप लोगों के मुकाबले करवाने जा रहे हैं जनाब, तीनों शहरों के दरमियान, पहाड़पुर, डेरा और टांग के दरमियान ये तीन ग्रुप हम बड़े बनाएंगे, ठीक है जनाब, एक्टिविटीज और आप लोगों के कंपटीशन कराएंगे, और कॉलर्स का कंपटीशन भी होगा, मैसेजेस का कंपटीशन भी होगा, ठीक है जनाब, और तीनों शहरों के जो लोग होंगे उनका एक ग्रुप मेंबर भी होगा, ग्रुप लीडर भी होगा, ताकि हम जो गिफ्ट भेजेंगे वो उसी ग्रुप लीडर को भेजेंगे और उसके थ्रू जो है उनको हम जिस तरह पहले होता है आपको पता होगा जो हम कंपटीशन करवाते हैं तो उसमें एक ग्रुप लीडर भी होता है, ठीक है जनाब, और वो ग्रुप लीडर जो है फिर सब चीजों को होल्ड कर रहा होता है। एक कॉलर इस वक्त जी हमारे साथ आ चुके हैं और उनको मैं इस वक्त मौका दे रहा हूँ। जनाब मेहरबान भाई हमें ग्लोबल एफएम सॉरी रेडियो पैगाम पहाड़पुर से अस्सलाम वालेकुम। जनाब जनाब मेहरबान भाई किवे हाल इन सही, मैं कल ही तो कुछ याद करना पिया दिली दिली कि मैं के लो इना दे नी मुके हने तक कठैया नहीं मुके जो वापस नहीं है वला के साडो
2: जी जी अब मैं नहीं तक हम ना कॉल कौन अंतर जी।
0: अच्छा वातवारे हुन कठैया वगैरह खत्म थी के लो खत्म थी के
2: जी जी सर जी।
0: अच्छा चलो माशाल्लाह वात हुन आज के वात के रकम ते लगे बदे वे पहाड़पुर अज तुरी आवाज सिर्फ पहाड़पुर च नहीं बल्कि डेरा दे लोग ही सुनते बैठे ते टांग दे लोग ही सुनते पे अज तुरी आवाज त्रिया शहर च वैंदी पई है
2: जी जी
0: ता के अक्सु से के पैगाम है तुरा अज दे शो दे हवाले नाल सारे हवाले दे नाल कंपनी दे हवाले नाल दसो जरी
2: की सर ते आवाज कटिन दे।
0: अच्छा जी मैं के कोई पैगाम है तुरा सही
2: सर जी कोई कोई बात नहीं के केसन को लेंदे रहो लोग
0: बा केसन को लेंदे रहो ना यो तो पैगाम है सबको बड़ा पैगाम तो यो के केसन को लेंदे रहो हैं जी ओके जी वो मेहरबानी शुक्रिया जनाब मेहरबान है ये मजदूरी करने वाले जो है एक हमारे भाई हैं चलती फिरती मजदूरी करने वाले बंदे हैं लेकिन एक दफा केसन के प्रोडक्ट लेके गए हैं तो अब इनकी पूरी फैमिली केसन है। पहले पहले मुझे याद है शिफा दर्द लेके गए थे फिर उसके बाद हाजमा कंट्रोल सिरप लेके गए फिर उसके बाद आयल और शैम्पू लेके गए फिर उसके बाद ग्लूटा वाइट रेंज फिर जाफरानी साबन फिर परफ्यूम यानी कि माशाल्लाह अब इनकी फैमिली जो है प्रॉपर मैं आपको कहता हूँ कि एक दफा आप हमारी चीज खरीदेंगे ना इंशाल्लाह ये जो हम टांग में पैकेज दे रहे हैं 1000 रुपए की पांच चीजें आजकल क्या मिलता है मुझे बताइए क्या ये हम अपनी जेब से आप लोगों को दे रहे हैं ये पांच चीजों के कोई 1000 रुपए नहीं बनते ठीक है जनाब ये पांच चीजें जो हम आपको दे रहे हैं ना ये 1000 रुपए हमारी खरीद भी नहीं होंगी समझ रहे हैं ये 1000 रुपए में चीजें जो हम आपको दे रहे हैं ना ये हमारी खरीद भी नहीं होगी जो हमारी खरीद होती है पांच चीजों की सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए वो जुमला इस्तेमाल होता है ना कि कंपनी की मशहूरी के लिए तो बिल्कुल जनाब कंपनी की मशहूरी के लिए ही हम आप लोगों को ये दे रहे हैं 1000 रुपए की इतनी सारी चीजें आप लोगों को दे रहे हैं। एंड अब्दुल हादी टांग से हैं जी हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह
0: जी
3: रहमतुल्लाह वबरकातुह
0: हां अब्दुल हादी हमारे साथ हैं जनाब चलो कल बारिश गुजरी इतना असर तो हो सी इतना शदीद मौसम तो नहीं हो बारिश का असर तो होने कुछ दीवार एक डोरी सूरज नजदीक है बिल्कुल जो इलाके पे आवे ना सूरज नजदीक थी मैंने तुरे पता है तू थोड़ी जाग चेंज करो तुरी उच्चा इलाका है सूरज के नजदीक थी मैंने ये मुझे को गर्मी ज्यादा होती है तुरे से इस्तेमाल पहाड़पुर आ गए टांग दी तरफ
3: जी
0: अच्छा पर टांग की थोड़े थोड़े जिया ते आवेंदे पहाड़पुर एफएम। जनाब नेटवर्क इशू होते बाजू का सारी चीजें आप एक दूसरे को नहीं सुना पा रहे होते। अच्छा जी मोहम्मद हमजा खेमटा कहते हैं मूसा वाली पिपला से हमारे साथ मौजूद है। और इंसान जितना भी मजबूत बन जाए कुछ लम्हे ऐसे जरूर आते हैं जो उसे अंदर से हिला कर रख देते हैं। कितने खूबसूरत प्रोग्राम है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं शहजादे। अस्सलाम वालेकुम गड़ा शहबाज तड़मा शे अब्दुल हादी, मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, हमें तो तड़पता सिर्फ खुदा ने देखा है। हम तनाई में बैठ कर रोते हैं, लोगों ने तो सिर्फ हमें देखा है। जी जना बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। ओके जनाब कॉल ड्रॉप हो गई, मैंने जल्दबाजी की, एक ही कॉल के ऊपर उनकी कॉल ले ली। एनी हाउ जी खलील अमान साहब कैसे हो, इमरान मरवा डिस्ट्रिक्ट टांग से हैं जनाब हमारे साथ। हम तो 88 एफएम पर आपको सुन रहे हैं। और शिफाय दर्द ऑयल का क्या तरीकाकार है, आपने कल यही मैसेज किया था, आज फिर आपने वही मैसेज किया। कल भी मैंने आपको बताया था कि शिफाय दर्द ऑयल जो है ये पट्ठों के अंदर जान डालने वाला तेल है। ये कुदरती तौर पर आपके जिस्म की सूजन जो होती है ना, आपको कभी भी कोई चोट लगे, आपका एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट ऐसा नहीं कि जिसके ऊपर आपकी स्किन फट जाए, ठीक है जनाब, फटी हुई स्किन के ऊपर ये ऑयल नहीं लगाना, ठीक है जनाब, जख्म के ऊपर ये ऑयल नहीं लगाना, प्लेन जो होती है ना स्किन उसके ऊपर आप इसको लगाना है, ठीक है जनाब। तो इसको आपने फटी हुई, आप जब अंदर से खोलते होंगे तो इसके अंदर लीफलेट होता है, उसमें तफसील लिखी होती है, पढ़ा करें जरूर। ये हम 4-5 रुपए का खर्चा करते हैं प्रोडक्ट के अंदर, एक पंपलेट होता है उसको पढ़ा करें यार, ठीक है, वो आप हमारे 3-4 रुपए ना पढ़ के जाया कर देते हैं। आप उसको पढ़ा करें, उसमें हिदायत होती है, उसमें आपके लिए फायदा होता है कि इस चीज को इस्तेमाल किस तरह करना है, किस वक्त करना है, किस तरीके से करना है उसको जरूर। अब बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है, उसको क्या जरूरत है पढ़ने की, वो आपके लिए हम डालते हैं। तो उसमें लिखा होता है कि फटी हुई जगह के ऊपर, जख्म के ऊपर आपने इसको नहीं लगाना, जो भी जगह है मुतासर जगह उसके ऊपर 8-10 कतरे डाल के आपने मसाज करना है, तो इंशाल्लाह कुछ ही देर के अंदर, बिल्कुल जनाब कुछ ही देर के अंदर दर्द जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम केटिया भाई, आज सुबह आपके शो का इंतजार किया था लेकिन रिकॉर्डिंग लगी हुई थी, आपका शो बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है, हम सब सुन रहे हैं, वेट कम पेट कम, फकी ने तो कमाल ही कर दिया है, मेरी 12 साल की बहन बहुत जो है स्मार्ट हो गई है, जो कुछ दिन पहले चल नहीं सकती थी, मेरी अम्मी ने आपको बहुत दुआ दी है, अल्लाह आपको मजीद तरक्की दे, आमीन। इरम शहजादी पहाड़पुर से है, ठीक है जनाब, बैंक वालों सुन रहे हो, कैसा प्यारा बनाती है कैसन कंपनी आप लोगों, क्योंकि हमारा स्लोगन यही है कि प्यारा लगना तो आप सबका हक है, ठीक है ना। और कैसन हर वो प्रोडक्ट आप लोगों को प्रोवाइड करेगी जो आपको प्यारा बनाने में मुआविन है। एक और कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कॉल कट गई। तो इरम शहजादी पाठपुर से हमारे साथ मौजूद हैं और माशाल्लाह इन्होंने वेट कम पेट कम को खरीदा है और इनकी बहन जो है माशाल्लाह स्मार्ट हो गई। बहुत सारी, यकीन करिए, बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते इस वजह से रुके होते हैं क्योंकि लोग मोटी लड़की को पसंद नहीं करते, उनको पता है शादी होनी है तो फिर तो इसने बलाएं बन जाना है, ठीक है जनाब, तो इससे पहले से जो है वो स्मार्ट लड़की देख रहे होते हैं। तो भाई उन लोगों के लिए, उनका वतीन के लिए, उन लड़कियों के लिए भाई जो ओवर ईटिंग करती हैं, एक्सरसाइज नहीं करती हैं और उनका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो ये प्रोडक्ट हमारी ज़रूर खरीदें, केसन वेट कम पेट कम। और उससे आप देखें कि जिस तरह ये इरम शहजादी पहाड़पुर से बोल रही हैं, और यही दुआएँ होती हैं जो इंसान की कामयाबी की तरफ लेके आते हैं, जब लोगों को डिजायर रिजल्ट मिलते हैं किसी चीज के। और अल्हम्दुलिल्लाह केसन वो कंपनी है कि आप हमारे कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे और जो डिजायर रिजल्ट आपने दिल में सोचे होंगे इंशाल्लाह इस्तेमाल के बाद आपको वही मिल रहे होंगे। बहुत शुक्रिया जी जनाब। और गौन है हमारे साथ दुरे अदंद यूजर ऑफ ओनली केसन नेचुरल पाकिस्तान, बहुत मुस्ताद जी अटेंडेंस लगा दे, मुकाबलों का नाम ना लें उस्ताद जी प्लीज। उस्ताद जी ہاں جی جی کہتی ہیں کہ بھائی نام لال ہے مقابلوں کا, مقابلوں میں تو مزہ بھی بہت آتا ہے, اور کیا ہے کہ جھگڑے تو ہوتے رہتے ہیں نا. ہاں جی سلام بھائی, آپ کے شو پہلے کی طرح مست ہے, اور آپ سرائیکی بڑی اچھی آتی ہے, آپ کو آپ سرائیکی بڑی اچھی آتی ہے, مجھے بہت اچھی لگتی ہے آپ کی آواز. آج کل ہمارے دوست پہاڑپور کے نہیں آ رہے, پہاڑپور کے نہیں آ رہے ہیں نا, کوئی میسج آتے ہیں, سب سننے والوں کو جانتی ہوں.
1: نام تیرا رب,
0: میں کون ہے یہ میسج, پھر کال آ گئی, کال کو موقع دے رہے ہیں. کالر کو السلام علیکم. جی کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیں گے؟ تین دفعہ آپ نے کال کی اور تین دفعہ آپ نے کال کی, وہ آئے تھے اسکول میں. میری آپ ڈیر اسمیل خان سے ہیں, آپ کیا؟
4: میرا نام مہنور ہے.
0: مہنور ہے, کون سی اردو والی مہنور یا کوئی اور مہنور ہے؟ اچھا آپ کوئی اور مہنور ہیں, وہ والی نہیں ہے؟ اچھا اور ہیں آپ مہنور. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ میں بالکل جی ٹھیک ہوں. پروگرام ہمارا سن رہے ہیں, کب سے شروع کیا سننا آپ نے؟ ایک مہینہ ہو گیا ہے. تو ہماری باتوں کا کوئی اثر شسر ہوا ہے جو ساری باتیں سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں؟ اچھا سمجھ آئیے باتوں کی کچھ کی. تو آپ کی ضرورت کی کوئی چیز ہے کیسن میں جو آپ کو ڈھونڈ رہی تھی اور آپ کو نہیں مل رہی تھی, یا آپ نے دوسری کمپنیوں کے استعمال کیا اور آپ کو فائدہ نہیں مل رہا تھا, تو کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہے ہماری کمپنی کے اندر؟ اچھا جی کون سا سوپ آپ نے لینا ہے؟ ہاں گلشن کیش اینڈ کیری پر جائیں آپ, وہاں پر جو سوپ کا ریگ لگا ہوتا ہے نا, جہاں پر سوپ پڑے ہوتے ہیں سارے نیچرل, ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر جائیں گے, کیسن کے سارے سوپ لگے ہوں گے, گلوٹا کا سوپ, زعفرانی سوپ, ملکی سوپ, رائس کا سوپ, کوجک ایسڈ سوپ, اپٹن کا سوپ, سارے سوپ ادھر پڑے ہوں گے. جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ وہاں سے لے لیں, ٹھیک ہو گیا؟ اوکے جی, بہت شکریہ. مانور جی ہمارے ساتھ, اور صابن ڈھونڈ رہی ہیں لڑکی, ہے جناب؟ تو صابن انشاءاللہ جو ہے آپ جب خریدیں گے ہمارے صابن کو استعمال کریں گے. میں جو پتے موڑ کی بات کر رہا تھا, وہ بھائی پچھلے ہفتے نا ہم سے ایک درجن زعفرانی صابن لے کے گئے, اور آج دو درجن لینے کے لیے آ گئے, یعنی کہ ٹوٹل چار پانچ دن گزرے ہیں ان کو, اور یعنی کہ لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ وہ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا اور اس کے بعد آج پھر دو درجن لینے کے لیے آئے ہوئے تھے. اچھا جی, اور یہ کون ہے جن کا میں میسج پڑھ رہا تھا؟ اسلام, میرا دوست کوئی نہیں ہے, آپ بنو گی ہیں؟ وہ حدیث لڑکی کی طرف میسج کر دیا تم نے. رونی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ رونی, آپ کا تھینک یو. اچھا جی, اور کون ہے؟ امجد قریشی خلیل بھائی, آپ کو اور سب سننے والوں کو سلام ہو گیا. جی جناب, یہ جو ہے پہاڑپور کا جو ایف ایم ہے اس کے یہ گروپ لیڈر ہیں ڈاکٹر امجد قریشی, اور اب یہ پتہ چلا گیا پھر مقابلے ہونے والے, تو میں نے اب ٹیم کو جو ہے تیار کرنا ہے.
1: جو کھو گیا وہی پایا تجھے یہاں.
0: اچھا جی, پہاڑپور میں کہتے ہیں کہ آواز کٹ رہی ہے. اچھا جی, وہ سگنل کا ایشو ہوتا رہتا ہے, لیکن میں پھر بھی میں چیک کرتا ہوں. وائی دس کال اویری نہیں جا رہی ہے, تینوں اسٹیشن کے اوپر آواز تو بالکل بھی صحیح, 101 ہاں جی 100% صحیح جا رہی ہے. کبھی کبھی نیٹ ریسیپٹر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, آگے سے اگر نیٹ کمزور ہو تو پھر بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. امیر حسین, ہاں جی. اچھا جی سلام جی, امیر حسین کہتے ہیں, اور ڈیر اسمل خان میں ایک گروپ ہوتا تھا, اس کا نام تھا فیوز گروپ. فیوز گروپ, تو یہ فیوز گروپ کا حصہ تھے, اور یہ کہتے ہیں کہ فیوز گروپ کو پھر سے جاگ جانا چاہیے ڈیرا والوں کا اور ٹانک والوں کا مقابلہ کرنے کے, پہاڑ پور والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب, اور ان کو موقع دیتے ہیں. جی السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام جناب علی.
0: جناب محترم, کون ہے ہمارے ساتھ, نام بتائیں گے اپنا؟ خضر حیات بات کر رہے ہیں بھائی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے
5: شکر الحمدللہ, آپ بتائیں خضر بھائی.
0: میں بالکل

0: उसका वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजू का दर्द मार खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उसी।
1: अच्छा माशाल्लाह, ये हमारी तीसरी शहादत है टांग से हमारी शिफाय दर्द के हवाले से।
0: यार टांग वाले तो खरीद भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो आपने लगाया ये पहले शुरू कुछ दिनों का हुआ है, तकरीबन इंशाल्लाह टांग वाले इस्तेमाल करेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, नहीं हमें बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, हमारा ये जो शुतुरमुर्ग का तेल है ना शिफाए दर्द, इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि आज तक लोगों ने ऐसा कोई तेल ना देखा था, ना कभी किसी कंपनी ने लॉन्च किया। जड़ी बूटियों के तेल तो हर किसी के पास है, जड़ी बूटियों वाले, ठीक है, लेकिन इस तरह
0: सब कंपनियों का तेल, क्योंकि ये तो रोजाना के प्रोग्राम चल रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: इसी आचरण से चल रहे हैं, तकरीबन जो प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन हमने पहली बार खरीदा भी पहली बार है, क्योंकि किसी कंपनी का और तेल में नहीं खरीदा।
1: नहीं खरीदा आपने, ठीक है।
0: जी जी जी, पहली बार, क्योंकि खरीदा भी है इस्तेमाल भी किया था जी।
1: तो आप मुतमईन हैं केसन शिफाय दर्द से?
0: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुतमईन है।
1: अच्छा, अगर इसी हालत के साथ अभी किसी डॉक्टर के पास जाते तो आपका ढेर सारा खर्चा हो जाना था, एक्सरे?
0: जी आजकल डॉक्टर के पास जाए पहले तो 1000 रुपए उसकी फीस है, उसके बाद 3-4 हजार की दवाई दे देते हैं।
1: ये बाजू का जो दर्द होता है ना, बाजू का दर्द, आप यकीन कीजिए कि आपको 3000 की दवाई लिखी जाती है, 1000 रुपए फीस और 3000 की दवाई, और उसके बाद इतना सुकून नहीं आना था जितना ये शिफाय दर्द को। आपकी बोतल पूरी लगी भी नहीं होगी मेरे ख्याल में।
0: नहीं नहीं सर जी, मुझे तो तकरीबन 4 दिन हुए हैं, 4 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ।
1: तो 4 दिन में तो आपको पहले दिन ही फर्क आ गया होगा, समझ आ गई होगी, काफी फर्क पड़ गया।
0: वो टांग में वो तकरीबन आपसे बहुत दूर है, वो तकरीबन वो तो 3 कुलाची के पास है।
1: हाँ कुलाची, हाँ उस साइड के ऊपर, तो फिर पहाड़पुर को सुना जाए।
0: वो अब्दुल हादी उसी जगह पर,
1: अब्दुल हादी बात सुन लो, ड्रामा कर गया हमारे साथ है, कहते टांग में आवाज आती
0: है। नहीं नहीं, एफएम तो टांग का सुन रहा है, कोई बात नहीं है, एफएम तो टांग का, वो तकरीबन शमूलियत भी करता है, हर प्रोग्राम में उसकी शमूलियत होती है, क्योंकि मुझे तकरीबन जब से ये टांग का एफएम शुरू हुआ है हम खुद ही सुन रहे हैं, तकरीबन हमारा काम ही ऐसा है, हम बार बार रहते हैं, ये प्रोग्राम होते हैं, हम होते हैं,
1: आप सुनते रहते हैं। चलो ठीक है जी, खिजर हयात नाम आपने बताया, खिजर बलोच नाम बताया?
0: खिजर हयात जरा बलोच, खिजर हयात
1: बलोच, खिजर हयात बलोच जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप भी हमारे एक ऐनी शाहिद बन गए कि भाई ये प्रोडक्ट वाकई काम करती है, और इंशाल्लाह ये आपको बहुत देर पास सुकून देगी। एक दो दिन वाली बात नहीं होगी कि लगाया तो आराम आ गया फिर दर्द शुरू हो गया, नहीं, इसको एक हफ्ता इंशाल्लाह दो दफा मालिश करें, आपके पट्टे मुकम्मल तौर पर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो वेरी मच जनाब। ये भाई टांक वालों, ये प्रोडक्ट हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट है, और ब्लेसिंग आप लोगों को महसूस होनी चाहिए कि आपके इलाके में भी ये प्रोडक्ट आ गए। जिस तरह असद भाई कह रहे थे कि भाई टांक वाले नहीं खरीदेंगे तो अपना नुकसान करेंगे, जी हमारा नुकसान तो नहीं है। सो भाई ये प्रोडक्ट आज तक आप लोगों को ऐसी प्रोडक्ट नहीं मिली है जो हम आप लोगों के लिए लेके रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रिच ऑयल है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच बोलते हैं शुतुरमुर्ग को, ये उसका तेल है और कुछ जड़ी बूटियां शामिल है इसके अंदर, और ये कुदरती तौर पर सूजन को ख़त्म करता है, कुदरती तौर के ऊपर ये आप सूजन अगर आपको बॉडी के अंदर हो ना, सूजन हो जाए तो सेरेशोपेप्टिडाइज एक टैबलेट होती है वो मिलती है, जैसे कि डेंजीन डीएस, इस तरह की टैबलेट खानी पड़ती है, आपको ये खाने की जरूरत ही नहीं है, ये आपको सूजन को कुदरती तौर पर खत्म करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम, एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, कौन इंसान नाम से सोपड़ा से? सादिक अली भाई, अल्लाह ने पर सादिक भाई की में हाल अच्छे वदे वे ठीक ठाक।
2: शुक्र है जेला दी मेहरबानी, तो सुन सुनो तो भी सेहत की
1: है। आज सवेरे ऐसा तो याद की थी, पैसे सवेरे सैयद रहमान मेरे कॉल की थी है, हां जी, ते तो वाला जिक्र थी है वैसे।
2: चंगा की करो ना, याद ना याद होंगी, देखो याद की तो मैं याद कर दे।
1: भैया सुनाओ से ठीक ठाक, चाय पीती बैठे हुए कि ना?
2: याद आ गए।
1: अच्छा, चाय को कितनी देर ही तू सब पी गिंदे?
2: बस बैठा तरसले ना।
1: कितने तरसले ना? मेरे तरसले को तो 5 मिनट ही गया, यकीन करो 55 मिनट हूं प्याला खत्म थी ना पे मेरा।
2: कमाल है, मैं इतना देर में का नहीं थी।
1: नहीं थी नहीं इतनी देर है जी। चलो मेरी मसरूफियत होंगी ना, तुम्हारी गालियां सुनना, अपने गालियां करना, इन बीजीएम चलावना, चाहे दरमियान ही रहे, जेल याद आंदी कि भाई सामने पही है। चलो जी, गुड बार्गेन हुआ।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Welcome to Radio Aman 88.4.

वेल वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन 03-04-99-25-38-8 पदी नंबर बने बता सुमा तकाल कोई हो मासरब खबरी कोई

0: हसन भाई, इनकी शॉप है, इनके साथ इसमें तमाम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं।
1: इंसान समझता है,
0: और बाकी इनके अलावा
1: कुछ उसके
0: माज मेरा प्यारा भाई है,
1: यही
0: और जितने भी छोटे बड़े शॉपकीपर हैं सब पर इश्मा के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, दस्तियाब है। एकराम भाई दादरवाला फजल हादी अमजमा सलाम, वालेकुम सलाम। एकराम भाई दवाने नयमा वाना की गुल मामद भाई और बास मामद भाई सर जमुग इश्मा तमाम प्रोडक्ट मिलावी की। अस्सलाम वालेकुम एकराम भाई, दादा आवाज होदा पोएट्री चराशी डेरा मजो की लाइबा खानी वाई वकास जमजम स्टोर पंदुना इश्मा तमाम प्रोडक्ट सर मिलावी की। मोहम्मद खान वाई छे हाउ आर यू बस उमदलते यू। अस्सलाम वालेकुम इकराम भाई, तासु सिंह है तबीयत देखा दे बराबर शुक्र खैर दे प्रोग्राम दे जबरदस्त दे खामोश औरिदुन के मस्तास हो डेर टाइम बाद मस्तास प्रोग्राम और मां खा खबर आवाज खपल ने मुबारक दिल के लेवे एन एस एच टाइम रा सर सर तरसी के जवंदो जिंदगी वा सहर लसुनवाया यूल सपोरे बबियास्ता सु खिदमत के हाजिर मां और दुआ के मियाद उस आते हर चरता चूसे तलाबाद खुशहाल हो बरियाली उसे इश्मा कॉस्मेटिक जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद दिलवी अल्लाह पामा।

अपने टाइम का बड़ा अच्छी मौसीकी आई, बड़े अच्छे लफ्ज़ न, बड़ी अच्छी फिल्म आई अपने टाइम दी, अपने दौर दी, पुरानी फिल्म, ये भी पुरानी फिल्म आई मेहदी हसन नहीं दख्तर दी आवाज़ आओ नाले रल के सुन दें ये गीत।